आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: भेजने वाले हैं। अब सुनेंगे
1: बड़ी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों

0: से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, ऐसे जियो जैसे कल ही मरना हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जब आराध्य हों भोले भंडारी, तो कैसे ना उन पर हम जाएं वारी। यही तो है प्रभु का संदेश, कि सरलता से बड़ा नहीं है कोई भेष।

विविध भारती पर सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस, आज सुनिए 244वां भाग। से संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 9वीं कड़ी कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। भूले बिस्र गीत कार्यक्रम का समय सुबह 7 बजे का है और 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत त्रिवेणी सुन सकते हैं कार्यक्रम आप और 8:30 से चित्रलोक। 9:30 से कार्यक्रम आज के फनकार, आज केंद्रित है फिल्मकार गुरुदत्त पर। दस बजे से सुनिए आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक लेखक हरिशंकर राणी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11 बजे से और 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 बजे से त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 बजे से सखी सहेली। 4 बजे आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ और 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन सकते हैं झरोखा के अंतर्गत शाम 6:30 से। 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। सुनिएगा 9वीं कड़ी, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। 7 बजे जय माला, 7:45 से इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। 'कचरे का मालिक' ये हास्य नाटिका सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे से। लेखन विनायक शंकर विनय का, निर्देशन रणजीत अहलुवालिया का और रात 8:15 से चित्रलोक। आठ बजकर 45 मिनट से समाचार संध्या, 9 बजे से कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता संजीव कुमार पर और 10 बजे से छाया गीत। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात और 11 बजे से सुन सकते हैं रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

एक बार फिर बता दें, सुबह और शाम 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज सुनेगा 9वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रामचरितमानस में आज सुनिए 44वां भाग।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
2: कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए
1: जी।
2: और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे गामा पदा निसा पामा गारे सानी धापा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, दैवत से क्या बनेगा
1: जी।
2: ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्यों पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए सामने। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहां से नहीं निकलता
1: जी,
2: आपको
1: जी।
2: तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी जितने हैं

0: सी शार्प काली एक जो है
1: जी,
0: वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट तक की मान लीजिए आप
1: जी जी,
0: और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है।
1: अच्छा।
0: इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए।
1: क्या बात है,
0: मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कदरी गोपाल नाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था।
1: जी जी जी,
0: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: ये अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति। दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे
1: जी,
0: और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन
1: जी।
0: हम दोनों बांसुरी में थे
1: जी।
0: तब डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि दो ट्रैक सिर्फ बांसुरी को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो पीस है मैं
1: जी,
0: वो पुरिया धनाश्री में था
1: जी, सुनाए प्लीज।
0: सा नि दा बा मा गा रे सा, ये हो गया पुरिया धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना,

0: नीचे के गा तक जाता है।
1: गजब।
0: तो ऐसा सा ढूंढ के निकाला मैंने, उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पूरा धनुष बजाया नहीं था। अजीब मूर्छना है ये।
1: जी जी, तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो
0: इन सब की तैयारी बहुत किए बिना आप मत करिए।
1: पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार के?
0: मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैन फ्लूट है
1: जी,
0: जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़ के। ये सुर जो है, ये कल्पेश मेरा जो शिष्य अभी आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है। इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं।
1: क्या बात तो है, वाह।
0: अगर ये यहाँ पे सा है तो ये इसमें रे बजेगा।
1: वाह।
0: रे, यहां से रे आ रहा है। तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा
1: जी। तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी।
0: ये तो मेरे कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है
1: जी। जी,
0: 55-56 साल की तपस्या है।
1: तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें पूरी तैयारी के साथ, तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का, कुछ ना कहो। इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दास से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास। इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है
1: जी।
0: मैं यही कहूंगा कि पंचम दास ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था।
1: अच्छा।
0: फिर मैं मलाड चला गया, मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ, 87-88 के बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था
1: जी,
0: विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा
1: जी।
0: 1942 ए लव स्टोरी
1: जी। जी,
0: तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूं रियाजी आदमी, उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके और बोले कमाल करते है तू, बंगला में बोले, हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या? हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा
1: राग केदार बजा
0: रहा है, डिस्टर्ब नहीं होता है? मैं एकदम डर गया, मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, एक्चुअली केदार इसमें बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था। तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही ले दे। तो अगर आप प्यार हुआ, मैं सुनाऊं आपको?
1: जी बिल्कुल।

0: वाह, बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं, साधते कैसे।
1: अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये याद दिलाया मुझे। उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल
1: जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जायी, भस्त्रिका। जब आप उज्जायी करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे।
0: जी जी जी।
1: एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका जो 64 का लय होता है, देन देन, ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई, बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे।
0: जी जी जी, सांस की साधना भी जरूरी है। तभी तो हम जब आपको देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बता दें कि पंडित जी जब जब बांसुरी बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई
1: जी,
0: है।
1: जी जी जी।
0: तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 1942 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।
1: जी, इस गाने पे आ रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया
0: जी,
1: और विधु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो पंचमदा बोले कि रोंगीला रोंगीला रोंगीला रे रोंगीला, बंगाली गाना है, इसी को तो इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना, उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके, वही अपना दादरा
0: जरूर सुनाया।

0: वाह अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।
1: मोहब्बत

0: कर लो।
1: गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आर पार फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। आज है जन्मदिन अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त का, उन्हीं पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: विविध भारती का ये मुंबई केंद्र है 102.8 FM पर। अब सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग।
1: 55 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गीता दत्त की आवाज में बाजी फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन की धुन।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं, हाँ। पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत, फिल्म 14वीं का चांद।

0: इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: देखो टर्मरिक

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, आप सुन रहे विविध भारती पर। और आज के इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार पर केंद्रित गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: पति पत्नी और वो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठा की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और ये कार्यक्रम है हम है राही प्यार के।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं। हाँ। पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल
0: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है एक गण तुम काहे को इनकार करता है
2: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खिलौना फिल्म का गीत आपने सुना आनंद बख्शी की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत कार्यक्रम हम हैराई प्यार के अगले गीत एक छोटे से अंतराल के बाद

0: इस गाने के साथ ही हम है रही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM पर। सुबह के 7:50 होने को है। अब सुनते हैं कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उज्ज्वल सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उज्ज्वल सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी। श्रोताओं नमस्कार, मैं अनुप्रिता आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की इस भाग दौड़ प्रतिस्पर्धा और बेचैनी से भरी दुनिया में हम अक्सर सफलता को पद, पैसा और प्रतिष्ठा से मापते हैं, लेकिन क्या हम कभी ठहर कर खुद से पूछते हैं असली सफलता क्या है? इंसान को सच में मुक्ति किससे चाहिए? और क्या दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है या फिर ये हमारी ही अनजानी मानसिक जंजीरों का परिणाम है? आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो इन सवालों को सिर्फ छूते नहीं बल्कि हमारी सोच की जड़ों तक ले जाते हैं। IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र, निवृत्त IAS अधिकारी और आज भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चेतना की एक नई दिशा दिखाने वाले ह्यूमैनिटी के शेरपा U2 यानी उज्ज्वल उके सर आज हमारे साथ मौजूद है। उज्ज्वल उके जी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। बाहरी सफलता के शिखर तक पहुंचकर भी उन्होंने उस शिखर को छोड़कर भीतर के हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। एक समय वो नीतियां बनाने वाले प्रशासक थे और आज U2 द शेरपा के रूप में वो मन के भीतर चलने वाले प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। उनकी विकसित की हुई माहोपेक्षा, जिसे वो महान त्याग या गहन क्षमा के रूप में समझाते हैं, कोई धर्म पंथ या परंपरा नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से उपजी चेतना की एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। आज वो हमारे साथ इस यात्रा, दुख के मूल कारण और आंतरिक मुक्ति की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत करेंगे। उज्ज्वल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: आज आपकी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। आज श्रोताओं ने हमें कुछ सवाल भेजे हैं तो उन सवालों पर बातचीत करेंगे और माहोपेक्षा उनको किस तरह से उनकी समस्याओं पर मदद कर सकती है इस पर बातचीत करेंगे।
2: जी,
1: तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है संपदा जी ने। वो एक हाउसवाइफ है, उनकी जॉइंट फैमिली है, उनके सास ससुर भी उनके साथ ही रहते हैं। तो बीमार सास ससुर जी की सेवा करना, बच्चों के स्टडीज रहते हैं, हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, तो ये सब संभालते हुए उन्हें बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, उदासी महसूस करती हैं, कभी कभी डिप्रेस्ड भी लगता है। तो संपदा जी जानना चाहती हैं कि माहोपेक्षा उनकी कैसे मदद कर सकती है।
2: जी, स्ट्रेस तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये तो मान के चलिए। बच्चे का जन्म होता है तो माँ को स्ट्रेस होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, चलना सीखता है, कभी नीचे गिरता है, वो भी एक स्ट्रेस है, शिक्षण लेता है, पढ़ाई करता है, तो भी एक स्ट्रेस है। जीना जो है हमारा, वो बिना स्ट्रेस के हो ही नहीं सकता है।
1: जी,
2: बस ये है कि हमको अपना अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा स्ट्रेस भाई इतना ज्यादा हो गया कि अब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, उस समय तकलीफ होने लगती है। अब सवाल यह है कि हर इंसान के अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो जो स्ट्रेस झेलने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कौन फिक्स करके देता है? कोई फिक्स नहीं करता, हम खुद ही फिक्स कर देते हैं। ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये रूल बुक है, इस उम्र के लोगों को इतना स्ट्रेस होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे वजन कैरी करने की जो प्रक्रिया है उसमें फिजिकल होता है कि आपने मशीन पे कितना वजन डाला, कहते हैं कि मशीन में इसको आप 10 किलो से ज्यादा मत डालिए, टूट जाएगा। तो उसकी एक कैपेसिटी है जो एक फिजिकल कैपेसिटी है, बट हमारी जो मानसिक कैपेसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो धारणाएं हैं, हमने जो अनुभव किया, हमने जो लोगों से सुना, उसके हिसाब से हमें लगता है कि भाई ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या हम किसी और को देखते हैं भाई उसके जितना स्ट्रेस मैं झेल पाऊंगा, इससे ज्यादा शायद नहीं झेल पाऊंगा। तो ये जो रिलेटिव एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके जो मैं अपनी परिसीमन कर लेता हूँ या अपनी सीमाएं बना लेता हूँ कि इस स्ट्रेस तक मैं झेल पाऊंगा, इसके बाद कठिन होगा, ये भी आपकी एक मानसिक धारणा ही तो है।
3: सही बात है।
2: तो जब ये फ्लेक्सिबल है तो आप इस चीज को उस एंगल से देखिए कि ये कुछ भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा कुछ घर के अंदर में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इससे 10 गुना ज्यादा भी स्ट्रेस को आप झेल पाएंगे।
3: फिर ये सारी बातें छोटी लगने लगेंगी।
2: तो जब ये फ्लेक्सिबल है तो मेरा ये कहना है कि आप प्रेजेंट में जिए। इस समय इस वक्त आपके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप झेल रहे हैं, हर एक का अलग अलग हिसाब से आप आनंद लेना शुरू कीजिए।
3: वाह।
2: सास ससुर जी की सेवा कर रहे हैं उसका भी एक आनंद लीजिए। आपको बाकी घर में जो दूसरे काम है उसका भी आनंद लीजिए। अचानक कोई मेहमान आ गया है, कह रहा है कि भाई मैं 3 दिन रहने को आ रहा हूँ, तो उसका भी एक आनंद ही लीजिए। उसको जब तक आप स्ट्रेस की तरह से देखेंगे तो आपको तकलीफ देगा। करना तो है ही ना
3: जी।
2: जब बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको चलना तो है ही ना जिंदगी भर। वो सोचे नहीं भाई बड़ा स्ट्रेस है मैं बैठे ही रहूंगा, तो नहीं बैठ सकता है। जीवन तो चलने का नाम है, तो जब चलना है तो क्यों ना आनंद के साथ चला जाए।
3: क्या बात है।
2: आने वाले स्ट्रेस हर इंसान के अलग होते हैं, आपको अपने हिसाब से उसको संभालना है, समझना है और उसको साथ लेके चलना है।
3: वाह। तो प्रेजेंट में जीना है और जो भी कर रहे हैं उसका आनंद उठाना
2: जी,
3: है।
2: बिल्कुल
3: ठीक। चेतन और अवचेतन मन की परतों को समझने का अनोखा अवसर, सफल जीवन की दिशा और तनाव मुक्त जीवन शैली का सार जानने के लिए O2 यानी उज्जवल उके सर की माहोपेक्षा कार्यशाला में अवश्य शामिल हों। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7030911302, 7030911302। संपर्क नंबर एक बार फिर 7030911302, 7030911302। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.usp.org.in। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है, उनका नाम है किरण। किरण यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स भी मिले हैं इससे पहले, लेकिन अब उन्हें, जैसे पहले संपदा जी की बात हुई, इन्हें भी बहुत स्ट्रेस आ रहा है। उन्हें अब ऐसे लग रहा है कि फेलियर का डर लग रहा है, इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस उन्होंने खो दिया है, तो इनको आप क्या कहेंगे?
2: देखिए ऐसा है कि एडिसन साहब को जब उन्होंने ये लाइट बल्ब का ये आविष्कार किया था, उनको पूछा गया था कि आज तो आप बहुत खुश होंगे कि आपने इतनी बड़ी तरक्की कर दी, आपने बल्ब बना दिया, कितना अच्छा हो गया आपके लिए। तो उसने बोलते बोलते ये कहा कि आपको क्या लगता है कि ये बल्ब मैंने ऐसे ही बना लिया, मैं 100 बार फेल हुआ हूँ। करते करते मैंने आज समझ लीजिए 100 बार फेल होने के बाद एक मेरा ये बल्ब सक्सेसफुल हुआ है। तो सवाल ऐसा है कि कोई भी फेलियर उसको आप आगे जाने वाले एक स्टेपिंग स्टोन समझिए, उसको एक सीढ़ी समझिए जिसमें आपको आगे जाना है। आप अगर उसको फेलियर को आप डिफीट समझ लेंगे और बैठ जाएंगे तो फिर वो आगे नहीं जा पाएंगे।
3: चेतन और अवचेतन मन की परतों को समझने का अनोखा अवसर, सफल जीवन की दिशा और तनाव मुक्त जीवन शैली का सार जानने के लिए

0: www.usp.org.in। श्रोताओं, आज हमने एक ऐसे सफर की झलक देखी जो बाहरी सफलता से भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। उज्जवल उके या U2 ह्यूमैनिटी के शेरपा हमें कोई मंत्र नहीं देते, बल्कि एक सवाल देते हैं, क्या आप सच में मुक्त हैं? माहोपेक्षा कोई भागना नहीं है, कोई पलायन नहीं है, ये है जागरूकता, स्वतंत्र सोच और भीतर की यात्रा का आमंत्रण। मैं अनुप्रता आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन शायद आज से आपकी अपनी आंतरिक यात्रा शुरू हो चुकी हो। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उज्जवल सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी, संकल्पना और निर्माण शिवराज सनस।
2: अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उज्जवल सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM पर हिंदी समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
6: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।

0: हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति

0: का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाली राष्ट्रीय मराठी समाचार बस अब कुछ ही पलों में।

अमित त्रिवेदी की आवाज में अंधाधुन फिल्म का गीत आपने सुना, जयदेव साहनी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। और नैना का तो कोई कसूर नहीं है भाई, क्योंकि जो भी चीजें हम देखते हैं हमारा मन तो उसी ओर जाने के लिए करता है। लेकिन बचपन की बात और है और लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना एक अलग बात है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अनुशासन भी बनाए रखना पड़ता है, जैसे सही समय पर उचित भोजन करना, व्यायाम करना या आराम करना। ये सारी चीजें तो बिल्कुल नियम पालन करना ही पड़ता है, और एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद तो ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। अगर हम इसका पालन न करें तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम में तो अभी वक्त है एक छोटे सा अंतराल का, अंतराल के बाद बस अभी लौटते हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अल्तमश फरीदी और साथियों की आवाज में मुदस्सर अजीज के बोल आप सुन रहे थे। सुहेल सेन का संगीत फिल्म हैप्पी भाग जाएगी और हम भी भागते हैं जब बारी आती है परहेज की, क्योंकि एक बार परहेज की नौबत आ जाती है तो शुरू होती है असली कवायद और इलाज भी जब शुरू हो आता है तो ऐसा लगता है कि जो जो नहीं खाना है, जो जो मना है, मन तो उसी ओर भागता है। तरह तरह के बहाने, तमाशे और ढेर सारी बातें बनाना तो हमें मंजूर होता है, लेकिन मजाल है कि परहेज़ के लिए हम मान जाएं। हालांकि जो लोग उन्हें मनाते होते हैं कि परहेज कर लेना चाहिए, इलाज करना चाहिए, इस तरह से जो परिवार के बाकी सदस्य मनाते रहते हैं उन पर भी अगर ये बात आ जाए और ऐसा मौका आ जाए कि उन्हें परहेज करना है तो बिल्कुल वही के वही बन जाते हैं जिन्हें समझा रहे हैं।

मनोज मुंतशिर के बोल आप सुन रहे थे। शान की आवाज में सनम रे फिल्म का ये गीत जीत गांगुली ने संगीत से सजाया। और कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई बार तो परहेज करना ही पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है। और कई बार ऐसी व्याधियां भी हमें हो जाती हैं जिनके लिए एक लंबा इलाज और परहेज आवश्यक है। और कुछ ऐसी व्याधियां भी हैं जो हमें जीवन भर इलाज और परहेज का हमें पालन करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सही मार्गदर्शन से शुरुआत में इलाज और परहेज करते करते एक दिन अचानक बगावत पर आ जाते हैं और उन्हें फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है?

0: अमिटी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत आपने सुना, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, कुमार के बोल, शारिब तोशी का संगीत, और वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं, हाँ। पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे या क्यों हमें ये सारी चीज़ें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीज़ें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीज़ें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं भी उन पर काफ़ी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखें उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला ज़रा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी इस परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें, पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी उतनी ही आसानी भी होगी।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीज़ों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि मैं पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

बैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इस तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, तो वो चीज़ें जो हैं बाद में जाकर परेशानी तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए, भाई परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: जो किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियां दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
1: भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना गलियन की मुस्कान है।
0: गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुँचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: एमएम के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ, बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने हैं सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, और ना ही मैं तुम्हारे सुख बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आओ, उधर नहीं, इधर आओ, अरे अपने दो रुपये, अरे अस्मेट अपनी चिंदिया, अबे देखता क्या है, चल उठा खा जल्दी कर, अगर अपना कोट गोड़ा दरवाजा जा और सीधा निकल जा बाहर, ठहर जा, अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहां देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की, कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटेगा।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहां से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर हैं वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया, मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया।

0: अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं

0: पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था
1: अच्छा?
0: मुझको।
1: तो ये शायर भी हैं?
2: शायर
0: बड़ी,
2: अरे तू देखती नहीं उसकी कोई पांच से नजमें उसके सर के पीछे पड़ी है।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

0: रोने लगी शाम रे।
1: आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें। तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है। व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल,
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है

0: नयन और बानी वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है। यहाँ तक कि एनबीटी की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है। हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है। तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में। तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर। उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जा करके मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती

0: हैं कि श्याम गौर किमी कहूँ बखाने, गिरा अनयन नयन बिरुबाने, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिरुबाने, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिन वाणी नहीं है, नयन और वाणी है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन वाणी, और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं, वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
2: तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय
1: अच्छा,
2: पीता हूँ
1: जी।
2: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था, तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी

0: कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने सभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह की निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी,
1: ये हम समझ सकते हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कहीं कभी भी, क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
0: जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: मुझे।
1: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
2: जी
1: को लेकर
2: जी, जी।
1: आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
2: जी जी जी मंदाकिनी जी, इससे मैं अपने
3: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: व्यंगकार कहिए, आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्री जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए, तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के, मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई
1: अच्छा
0: कहानी लिखी हुई।
1: जी
0: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी, वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो हम बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं, उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की, तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा
0: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
0: गोलोकवासी हुए अभी इसी
1: जी
0: 31 अक्टूबर को।
1: जी
0: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा।
1: जी
0: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया।
1: जी
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब आप मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था।
1: जी
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है।
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं 2 लाइनें उसकी,
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे
1: धीरे
0: धीरे,
1: धीरे।
0: जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है,
1: जी,
0: जहां आप
1: आप
0: पहुंचे
1: पहुंचे
0: छलांगे
1: छलांगे
0: लगाकर
1: लगाकर,
0: वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे
0: धीरे।
1: धीरे।
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए,
1: जी
0: किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया
1: गिराया
0: न
1: न
0: खुद
1: खुद
0: को
1: को
0: उछाला,
1: उछाला,
0: कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी, कि
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं, यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी, हाँ, जी,
0: उसके बाद आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
1: जी। मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
0: मेरा
1: मेरे गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
0: है।
1: जी इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।

0: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं, ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी, उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएँ, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएँ। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वह भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
0: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: जी उंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
0: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
1: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं, उनका एक गीत है ओहरे ताल मिले नदी के जल से,
0: क्या बात है,
1: नदी मिले सागर से, ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

बेगम अख्तर की गाई गज़ल हम चंद लम्हों के बाद सुनवाएंगे। पहले पेश खिदमत है गुलाम अली की आवाज़ में यह गज़ल। कलाम है नासिर काज़मी का।

नासिर काजमी का कलाम था, गुलाम अली की आवाज़ थी, ये थी एक गज़ल। लीजिए अब पेश है पंकज उधास की गाई गज़ल, कलाम है राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उधास की। एल्बम का नाम है नबील।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल, कलाम है कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की।

0: भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: तलत अजीज की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की थी। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र के स्वर में ये गीत, रचना गुलजार की, संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आसमान का रंग बदल रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी।
0: ये स्वर गुलजार का है।
1: जी पास के पेड़ से उड़ा और सुबह को लाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा, चल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

सिर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो?

0: मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो?
1: छुरी से, तीर से, तलवार से क्या होने वाला है? हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिल एक मंदिर है, तुम उसकी मूरत हो, किसी ने सच कहा तुम कितनी

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा।

हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

0: मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा के कल आएंगे चराग जले, और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई, तो खुदा वाले भी बरसों की इबादत छोड़ देते हैं।
1: क्या बात है,
0: मेरे महबूब तुम हो अमानत।

0: नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में। अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। सरे बाजार मेरे हुस्न का चर्चा ना करो, प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो, चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा

0: मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है

0: उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। यह कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज़।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनू रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: तो
1: प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाए, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं। तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारीपन होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सीआई

जरा हीरो और हीरोइन का नाम बता दीजिएगा। गीतकार का नाम पता है तो वो भी बता सकते हैं आप।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है। हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं। कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदी होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार, प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए, कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आँखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आप पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए। सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सुनील दत्त शकीला। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के।
1: अमिता बड़े राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या संरक्षण सहकार्याविषयीचं निवेदन जारी, चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर 7% राहण्याचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज, अमेरिकेकडून इराणवर पुन्हा हवाई हल्ले, प्रत्युत्तरादाखल बहरीन कुवेत कतारवर क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा इराणचा दावा, अमेरिका इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात 6% वाढ, आणि विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेच्या कनिष्ठ गटात भारताच्या अर्णव पापरकर याची उपांत्य फेरीत धडक। भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची द्विपक्षीय भागीदारी भविष्यासाठीचं एक भक्कम नातं असून आर्थिक आणि व्यापार विषयक एकात्मतेला मिळालेली गती हे या चर्चेचं यश असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बनीज या दोघांनी देशांमधल्या संरक्षण सहकार्याबाबतचं संयुक्त निवेदन जारी केलं, त्यावेळी ते बोलत होते। ऑस्ट्रेलियात मेलबर्न इथं दोन्ही नेत्यांची आज बैठक झाली, त्यानंतर हे निवेदन देण्यात आलं। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधल्या सामायिक घटकांवर प्रधानमंत्री म्हणाले,
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारी

कोरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी। कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी

बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें, इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं, जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी ज़रा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इन्होंने इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आंखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहाँ चौदहवें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आज़मी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आँखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है, हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी।

गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने ये लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफ़र साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज शुरू का सफ़र ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2:00 थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के

0: सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर

0: यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।
3: आपके हसीन रुख पे आज नया

0: बहारें फिर भी आएंगे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी, की संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है,

श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रवि

0: बार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम छाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कंबा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है। दीपा, ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भी

0: क्षण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
1: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
0: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
1: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगती के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
0: जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
0: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
1: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
0: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
1: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
0: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर

0: दुष्ट रहता था, आठवीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
1: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
0: हाँ हाँ,
1: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए। तो गुल्लक
0: हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
1: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
0: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही, आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा के उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था।

0: सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है, और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं, और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे लौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
0: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है, जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम
1: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है, है।
2: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
3: और हमेशा रहेगा।
2: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहां से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
3: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई।
2: हाँ।
3: इस तरह से भी यानी देखिए, यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
2: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
3: किस तरह की परवरिश
2: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर

0: कि उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नज़र सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यार हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
0: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ, बचपन से मुझे कोट कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था।
0: तो यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
1: वो भी गर्मियों में,
0: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगी बस थोड़े ही दिन में, इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना, तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों के में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: और मेरी, हमारे एक पहचान वाले थे, तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना, जैसे रबड़ी वाला, जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो, उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत,
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली,

0: तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज़ बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठ कर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और उन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
0: अभी भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त वाकई में हो चुका है सायोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी, भगवान जी बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए?
1: दीदी मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया?
1: दीदी अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी हम बहुत सुनते थे, पहले क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गांव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुददार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो या बाजरा है, गंवार है, ये मोट वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरा दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है? बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक है, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकेंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों।

0: कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं
1: और बिल्कुल बिल्कुल घूम के आएं और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान

0: बिहार में खास तौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है पर्यटन?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह,
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ,
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी वो है फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
0: हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेघा।

0: तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंश

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है, और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना?
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम। तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी।
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है, कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी जी जी,
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी।
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी।
1: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए तो।
1: जी जी।
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी जी।
0: जी गीतकार,
1: संगीत तैयार किया है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: नमस्कार, मी उमा रायकर। ऐकूया काही ठळक घडामोडी। भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची द्विपक्षीय भागीदारी भविष्यासाठीचं एक भक्कम नातं असून आर्थिक आणि व्यापारविषयक सहकार्याला मिळालेली गती हे या चर्चेचं यश असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बनीज यांनी दोन्ही देशांमधल्या संरक्षण सहकार्याबाबतचं संयुक्त निवेदन जारी केलं, त्यावेळी ते बोलत होते। राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समिती स्थापन केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली। ही समिती 6 महिन्यात अहवाल देईल आणि हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा आणायचा प्रयत्न करू, असं ते म्हणाले। अमेरिका इराण संघर्ष तीव्र झाल्यानं जागतिक बाजारपेठांवर त्याचे पडसाद उमटले आहेत। ब्रेंड क्रूडच्या किमतीत 6% अधिक वाढ होऊन प्रतिबॅरल $78.80 पर्यंत ते पोहोचले आहेत, तर अमेरिकन कच्च्या तेलाच्या दरातही वाढ होऊन ते प्रतिबॅरल $75 पर्यंत गेले आहेत। तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाई आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबतची चिंता पुन्हा वाढली आहे। मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्ये आज दिवसअखेर 238 अंकांची वाढ झाली आणि तो 76,742 अंकांवर बंद झाला। राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टीही 81 अंकांची वाढ नोंदवत 23,963 अंकांवर बंद झाला। याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 7 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात। नमस्कार।
1: मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था। मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
2: अरे वाह, क्या बात।
1: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही हैं कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
2: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
2: अरे वाह, क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
2: तो गा के सुनाई गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
2: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए, बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला है यार रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
2: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम, करदाना, मोती, ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी
0: बताएं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपने पसंद का ये गाना।

तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए।

0: हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर 4002462। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर 4002462। मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता। उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

0: कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी।
1: कभी

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

एक उम्र के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं,

ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो, हाँ बस सही हो, ऐसा।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: आज के इस प्रोग्राम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

अभिजीत और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत खिलाड़ी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। देव कोहली ने इसे लिखा और जतिन ललित का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने विविध भारती से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्त्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: ये सुदास और हेमलता की आवाजों में चित चोर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

यह है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में भक्ति गीतों का प्रोग्राम संध्या रंजन लेकर आएंगे 6:35 से। 6:45 से संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इसका 9वां भाग आप सुनेंगे। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोणु मुजुमदार से ममता सिंह की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 7 से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर आएंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। आर्टिस्ट वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 8 से हवा महल में हास्य नाटिका कचरे का मालिक, लेखक विनायक शंकर विनय, निर्देशक रणजीत अहलुवालिया। 8:15 से चित्रलोक लेकर आएंगे और 9 से प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। नौ बजकर 30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेता संजीव कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 से छायागीत और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह की सभा में सवेरे 6:05 से वंदनवार, 6:35 से श्री रामचरितमानस का भाग 245 आप सुनेंगे। से संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का 10वां भाग आप सुनेंगे। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोणु मुजुमदार से ममता सिंह की बातचीत आप सुनेंगे। 7 से भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के 7:30 से, 8:15 से और दोपहर 2 से वंदे मातरम एक जय घोष का भाग 36वां आप सुनेंगे। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर आएंगे 8:30 से और रात्रि 8:15 से। आज के फनकार 9:30 सुबह व रात्रि आधारित होगा गीतकार असद भोपाली पर। 10 पिटारा में हेलो फरमाइश, 11 रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल और 1 से वक्त होगा सुरीला सफर का। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे का वक्त होगा। 3 से हेलो सहेली, 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी, कहानी वो पुरानी बेंच, लेखिका सौम्या शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 5:30 से तराने नए पुराने का वक्त होगा। 6:35 से संध्या रंजन, 7 जयमाला और 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। 8 हवा महल में सुनिएगा प्रहसन फोकट चंद, लेखक अनिल निगम, निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर। 9 वक्त होगा प्रोग्राम आपके लिए का। 10 छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 11 से रंग तरंग। आप सुन रहे थे झरोखा में आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: 244-80-135.
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
2: कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए
1: जी।
2: और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे गामा पदा नी सा पामा गारे सानी दा पा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, दैवत से क्या बनेगा
1: जी।
2: ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए कि पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए सामने। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहाँ से नहीं निकलता
1: जी,
2: आपको
1: जी।
2: तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी जितने हैं, सी शार्प काली एक जो है
1: जी,
2: वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट तक की मान लीजिए आप
1: जी, जी।
2: और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है।
1: अच्छा।
2: इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए।
1: क्या बात है।
2: मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं कदरी गोपालनाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था
1: जी, जी, जी।
2: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: ये अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
2: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति। दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे
1: जी,
2: और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन
1: जी।
2: हम दोनों बांसुरी में थे
1: जी।
2: तब डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि दो ट्रैक सिर्फ बांसुरी को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो पीस है, मैं
1: जी,
2: वो पुरिया धनाश्री में था
1: जी। सुनाए प्लीज।
2: सानी दाबा मगरे सा, ये हो गया पुरिया धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना,

0: नीचे के गा तक जाता है।
1: गजब।
0: ऐसा सा ढूंढ के निकाला मैंने, उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पूरा धनाश्री बजाया नहीं था। अजीब मूर्छना है ये।
1: जी जी, तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो
0: इन सब की तैयारी बहुत किए बिना आप मत करिए।
1: पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार की?
0: मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैन फ्लूट है
1: जी,
0: जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़।

0: ये सुर जो है, ये कल्पेश मेरा जो शिष्य अभी आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है। इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अगर ये यहाँ पे सा है तो ये इसमें रे बजेगा,
1: वाह,
0: रे, यहां से रे आ रहा है। तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा
1: जी। तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी।
0: ये तो मेरे कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है
1: जी। जी
0: 55-56 साल की तपस्या है।
1: तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें पूरी तैयारी के साथ, तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का, कुछ ना कहो। इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दास से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास। इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है।
1: जी,
0: मैं यही कहूंगा कि पंचम दा ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था।
1: अच्छा।
0: फिर मैं मलाड चला गया। मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ, 87-88 के बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था
1: जी,
0: विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा
1: जी।
0: 1942 ए लव स्टोरी
1: जी। जी,
0: तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूँ रियाजी आदमी, उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके और बोले कमाल करते आए तू, बंगला में बोले, हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या? हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा
1: राग केदार बजा रहा है,
0: डिस्टर्ब नहीं होता है? मैं एकदम डर गया। मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, एक्चुअली केदार इसमें बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था। तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही दे। तो अगर आप प्यार हुआ मैं सुनाऊं आपको?
1: जी बिल्कुल।

0: वाह, बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं, साधते कैसे।
1: अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये याद दिलाया मुझे। उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल
1: जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जयी, भस्त्रिका। जब आप उज्जयी करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे।
0: जी जी जी।
1: एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका जो 64 का लय होता है, देन देन, ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई, बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे।
0: जी जी जी, सांस की साधना भी जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: तभी तो हम जब आप

0: को देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बता दें कि पंडित जी जब जब बांसुरी बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई है।
1: जी जी जी।
0: तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 1942 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।
1: जी, इस गाने पे आ रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया
0: जी,
1: और विधु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पंचम दा बोले कि रोंगीला रोंगीला रोंगीला रे रोंगीला, बंगाली गाना है, इसी को तो इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके वही अपना दादरा
0: जरूर सुनाया।

0: वाह अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में, और अब जयमाला में वक्त है इस गीत का। किशोर कुमार ने इसे गाया है, बेमिसाल फिल्म से हमने इसे चुना है। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, आर डी बर्मन की तर्ज।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कारवां फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: दोस्तों नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डिजिटल क्रिएटर वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत।
1: विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं आर्टिस्ट वर्षा सोलंकी। वर्षा जी बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि वर्षा इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और इसके अलावा एक डांस शो में भी लोगों ने आपको देखा है। इन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि ये इंस्टाग्राम वाला मामला कहां से आया जिसमें आप बड़ी बड़ी आंखें करके और गानों पर तरह तरह की एक्टिंग करती हैं।
2: यस, सबसे पहले तो इंस्टा नहीं था, बट इतना नहीं चलता था। पहले म्यूजिकल ऐसा था, कुछ म्यूजिकल मतलब टिकटॉक था। टिकटॉक से फिर 2019 से वो स्टार्ट हुआ और जब टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पे मैं रील्स में आ गई, तो वहां से मेरा वो सब कुछ स्टार्ट हो गया। और मैं पहले नॉर्मल वीडियो बनाती थी, इतना कोई रिस्पांस नहीं आता था। और जब मैं मेरी बच्ची के साथ वीडियो बनाने लगी, कॉमेडी वीडियो, तब लोग मुझे बहुत लाइक करने लगे। और फिर मैंने सोचा यार लोगों को यही चाहिए, मसाला चाहिए लोगों को। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी से मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं बीच बीच में थोड़े रोमांटिक वीडियो बनाती हूँ, डांस के भी वीडियो बनाती हूँ। डांस का शौक मुझे बहुत है बचपन से, मतलब मेरी मम्मी के पेट में ही मैं डांस करती थी। रियली सच में, पहले ऑर्केस्ट्रे हुआ करते थे, उस ऑर्केस्ट्रे में मेरी मम्मी पापा जाते थे और ज्यादा करके जॉनी लीवर जी है ना हमारे कॉमेडी किंग, तो उनके शो बहुत देखते थे।
1: ओके,
2: हाँ, लाइव शो। तो आई थिंक सो मुझे भी ऐसा लगता है कि
1: वहीं से
2: कीटाणु आई हूँ मैं, ऐसे खुद को मानती हूँ।
1: ओके, ठीक है। तो इतनी सारी नौटंकी बचपन से ही थी?
2: ऑफकोर्स बचपन से। कभी मैंने इतना शो नहीं किया था, लेकिन जब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि टिकटॉक आया था।
1: नहीं, स्कूल कॉलेज के जमाने में क्या चल रहा था?
2: बहुत जोक करती थी, बहुत।
1: अच्छा?
2: हाँ, बहुत बहुत जोक करती थी। कार्टून टाइप, मुझे कार्टून बनना बहुत पसंद है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ये क्या बोल रही है, लेकिन सच बोलूं, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे कार्टून बनना बहुत पसंद है ताकि मैं लोगों को हंसाऊं।
1: अच्छा।
2: जैसे अभी बीच में जैसे कोरोना आया था 2020 में, और बहुत मतलब लोग पीड़ा में थे। पता है आप लोगों को क्या सिचुएशन थी उस वक्त? तो भी ये जो टिकटॉक था बहुत वायरल हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ से कुछ तो करते हैं। लोगों को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मैं उनको हंसाना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में थे, काम नहीं करते थे, घर में ही बैठे थे लोग, बाहर तो निकलना मुश्किल ही था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ही मैं लोगों को हंसाती हूँ। सच दिल से बोल रही हूँ, मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है।
1: तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? जैसे किसी गाने का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर कुछ कर दिया, कोई डायलॉग उठाया, उसके ऊपर कुछ कर दिया?
2: पता नहीं, खुद से ही आता है। बोले ना, मैं बॉर्न कॉमेडी का कीड़ा बैठा है मेरे अंदर। सब मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। पहले तो मैं एकदम नॉर्मल, मैंने आपको बताया, नॉर्मल वीडियो बना दी थी। और फिर बाद में पता नहीं मेरी शक्ल ही वैसी दिखती होगी।
1: नहीं, नॉर्मल वीडियो में भी कुछ कॉमेडी जैसा?
2: ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब उसमें मैं कुछ ना कुछ मेरा मसाला डाल देती हूँ।
1: अच्छा।
2: हाँ, समझो अभी कुछ गाना रोमांटिक हो, ठीक है, तो उसके बाद और कुछ उसमें ऐड कर लूँ क्या, अपनी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी करके? लोगों को वही चाहिए ना आजकल। कोई कोई बोलता है यार क्या यही, बट वही लोगों को पसंद आता है, ओवर एक्टिंग।
1: जब पहली बार आपका कोई वीडियो, आपने बताया कि आपने अपनी बेटी के साथ किया था और वो धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया था, क्या रिस्पांस था आपका कि ये, क्योंकि पहले तो रिस्पांस मिल नहीं रहे थे?
2: नहीं, बिल्कुल।
1: फिर अचानक कोई वीडियो चल गया।
2: हाँ।
1: तो कैसा लगा था और उसके बाद क्या हुआ?
2: अमेजिंग, सच बोलूं मुझे खुद नहीं पता था। नॉर्मल मतलब बेबी स्कूल से आई थी, ठीक है, उसको मुझे खाना खिलाना था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाते। तो मैंने क्या किया, जो एक गाना था ना, कब आओगे कब आओगे, उसके ऊपर मैंने एक रील्स बनाई, कान में फोन लगाया और मैं ऐसे दिखा रही थी मेरे हस्बैंड को मैं कॉल कर रही हूँ कि तुम कब आओगे और इस परेशानी से मुझे छुटकारा पाओ। मतलब बच्चे अच्छा। आएगी, उसको खाना खिलाना, उसका सब कुछ कर देना। मैं खुद परेशान हो गई थी कि तू यहाँ पे कब आएगा और इसको संभालेगा। तो ऐसा मैंने कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो जो गाना था वैसे मैंने वो एक्ट किया था।
1: एक्ट नहीं किया था, वो चेहरा ऐसा वैसा बनाया था पूरा।
2: Yes.
1: तो ये कहाँ से आता है ये कि ऐसा चेहरा कर लो, ये बड़ी बड़ी आंखें कर लो इस गाने में, जबकि गाना बड़ा डिफरेंट टाइप का,
2: बहुत डिफरेंट टाइप का,
1: पर आप जो एक्टिंग करती हो उससे लोगों को हंसी आने लगती है?
2: ऑफ कोर्स, आना ही चाहिए ना।
1: अच्छा
2: आना ही चाहिए लोगों को, एक्चुअली वही तो चाहिए मुझसे, इसीलिए हाँ। मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो करना चाहिए ताकि लोग खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, और मुझे वही चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपकी वीडियो देख के

0: में सुकून मिलता है, जो टेंशन रहते जो भी घर में उनका कुछ भी चलता है तो लोग मेरी वीडियो देखते, क्योंकि मेरे कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा था कि सच में आप बहुत लोगों को हंसाती है और आपके वीडियो देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे कमेंट्स आते हैं।
1: अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये टेक्नोलॉजी का दौर बदला और एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया जिसके जरिए आपको एक नॉर्मल लड़की से एक स्पेशल लड़की की पहचान मिली।
0: हाँ,
1: आप लोकप्रिय हो गई, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला।
0: yes.
1: तो ये टेक्नोलॉजी के इस दौर को सलाम करना चाहेंगी कि इस टेक्नोलॉजी ने आपको लोकप्रिय बनाया?
0: ऑफ कोर्स उन्होंने ही मुझे लोकप्रिय बनाया, मेरे जो फैंस है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं जहाँ पे थी और मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि उनका बहुत मुझे सपोर्ट है, बहुत प्यार करते मुझसे, और उनको प्यार देना चाहिए और उनको खुशी देना चाहिए, ये मेरा फर्ज है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सोशल मीडिया पे।
1: आप टेलीविजन पर एक डांस शो में भी नजर आईं, तो सबसे पहले तो ये कि डांस से क्या रिश्ता था बचपन से, फिर ये कि ये मौका कहाँ से आया?
0: पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा में पहले जाती थी, पहले शो हुआ करते थे जैसे गणपति का त्योहार अभी भी है तो उसमें ना ऑर्केस्ट्रा करती मैं, और फिर बाद में मैं डांस बहुत करती थी, मम्मी बोलती थी कि कर ले तू डांस, तेरे में बहुत हुनर है।
1: किसी से सीखा नहीं था?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, टीवी पे देखती थी और डांस करती थी अपने हिसाब से, नॉट कॉपी।
1: अच्छा सच सच बताओ पढ़ाई में कैसी थी? हंस के नहीं, सच सच बताओ।
0: ये क्यों पूछ रहे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? पढ़ाई में ओके थी, इतना नहीं थी, बट मैं एक्टिव बहुत थी स्पोर्ट्स में और डांस।
1: कौन सा खेल खेलती थी?
0: खो खो और लंगड़ी जो रहती है ना, वो मेरा बेस्ट था।
1: ओके चलो अब डांस की बात कर रहे थे।
0: यस
1: तो करो।
0: मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो मुझे लगा मेरा कोई डांस देखेगा नहीं, लेकिन मैं कॉमेडी के साथ साथ अपना डांस भी उसमें अपलोड करती हूँ, डांस करती थी और फिर अपलोड करती थी वीडियो, और फिर लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था। और फिर 2024 में आई थिंक सो मुझे कलर्स चैनल्स के यहाँ से डांस दीवाने के लिए कॉल आया था कि आपका डांस बहुत अच्छा है तो प्लीज़ आपके दो वीडियोज हम लोगों को भेज दीजिए, ऐसे बोले। तो
1: बहुत खुशी हुई होगी कि डर लगा था?
0: नहीं नहीं कुछ डर नहीं, क्योंकि घर में ही करना था ना, स्टेज पे थोड़ी करना था।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए स्टेज पे अलग बात है, घर पे अलग बात है। तो उनको दो वीडियो मैंने अपलोड किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको डांस दीवाने में चांस मिल गया, आप यहाँ पे आ जाइए। और फिर बाद में उन्होंने मेरा वहाँ पे भी ऑडिशन लिया, जो कि वहाँ पे बहुत सारे कोरियोग्राफर, तब मेरी
1: हालत खराब
0: होगी क्योंकि सामने ही थे ना बहुत सारे लोग, तो थोड़ा डर गई थी, बट कोई बात नहीं, भगवान का नाम लिया और मैं बहुत अच्छे से डांस की और लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कौन से गाने पे डांस की पता है आपको? आंटी नंबर वन, पता है गोविंदा जी का?
1: हाँ,
0: उस पे मैंने किया था साड़ी वीडियो पहन के और सच में लोगों को पसंद आया, तो वहां से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया।
1: और उसके बाद का सफर कैसा रहा, इतने सारे सेलिब्रिटीज और वो सब?
0: हाँ वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था, बाप रे बाप। सबसे पहले तो वहाँ से निकलना मुश्किल था क्योंकि 5 महीना मुझे वहाँ पे रहना पड़ा।
1: ओके
0: हाँ, मैं घर बिल्कुल नहीं आती थी, मैं बहुत मेरी बच्ची को मिस करती थी।
1: अरे यार
0: हाँ, हमारे हर हफ्ते कोरियोग्राफर चेंज होते थे और गाना चेंज होता था, और शो के पहले हमारे रिहर्सल होते थे, एक हफ्ता पूरा रिहर्सल होते थे, और हमारे जो डायरेक्टर है जो भी चैनल वाले थे वो हमारा पहले डांस देखते थे, सिलेक्ट करते थे कि कौन सा उसको गाना देना चाहिए, कैसा डांस परफॉर्मेंस करती, ये सब पहले होता था और फिर उसके बाद हम लोग स्टेज पे आते थे।
1: बहुत ज्यादा मेहनत का काम,
0: बहुत बहुत मेहनत का काम है।
1: किन किन बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकात हुई?
0: हाँ सबसे पहले तो माधुरी दीक्षित मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
1: वो बड़ी फैन है कि तुम बड़ी फैन हो?
0: मैं भी बड़ी फैन हूँ, अभी मुझे पता नहीं वो है कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला तो है बट मैं भी हूँ।
1: उनके सामने भी डांस किया था?
0: हाँ उन्होंने मुझे मतलब सबके सामने भी पहचाना कि आर यू वर्षा, बोले यस यस यस, तो अलग ही मोमेंट था वो कि उन्होंने मुझे पहचाना। और सुनील शेट्टी जी भी जज थे वहाँ पे, तो हर हफ्ते हम लोग की मुलाकात होती थी, और एंकरिंग का काम भारती जी करते थे, और भारती जी तो बहुत बेस्ट है, भारती सिंह, तो हम लोग का हर हफ्ते मिलना होता था, हम लोग बातें करते थे, और कभी हम लोग को सेल्फी चाहिए होती तो मैडम बुलाती थी, वर्षा आ जा सेल्फी ले ले, और उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे रहते थे, और समझिए उनको पसंद भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी मिस्टेक हो जाए ना तो ऐसा कुछ नहीं बोल देती कि नहीं आपका डांस

0: अच्छा नहीं, ये नहीं, वो बल्कि बहुत अच्छा बोलते थे कि आपका डांस बहुत ही अच्छा है।
1: वाह, तो वो पूरा सफर जो है आज मुड़ के दिखती हो तो क्या महसूस होता है?
0: मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई सच में। मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी इस शो के पहले, बट मैं वहां से जब निकली, मतलब पूरी तरह से मैं चेंज हो गई, मैंने खुद को चेंज कर लिया।
1: वाह,
0: हाँ सच में,
1: क्या बात है।
0: हाँ।
1: और अब लगातार वीडियोस बन रहे हैं और वो लोकप्रिय हो रहे हैं, फॉलोअर्स भी बढ़
0: followers.
1: रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, कितना बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को लगातार एक्टिव बनाए रखना और अपने लोकप्रियता के ग्राफ को कायम रखना।
0: उनको रोज अपडेट देना पड़ता है।
1: रोज के कितने वीडियो बनाने हैं?
0: बहुत बनाती हूँ मैं।
1: बहुत मतलब कितने?
0: हाँ। वैसे मैं बनाती हूँ और ड्राफ्ट में रखती हूँ।
1: अच्छा,
0: ऐसा है, ड्राफ्ट का सिस्टम है उसमें। फिलहाल तो अभी 10-12 बनाती हूँ, पहले तो मैं 20-21 डालती थी वीडियो।
1: बाप रे।
0: हाँ।
1: तो इतना आइडियाज लगातार, मतलब आइडियाज की फैक्ट्री चलती है दिमाग में।
0: हाँ, जैसे गाना आता था तो फटाफट मेरे दिमाग में चलता था कि इसके ऊपर क्या करना है।
1: अच्छा,
0: ऐसा होता था।
1: आइडियाज जो है ये दिन रात सोचते रहना पड़ता है?
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं,
1: इंस्टेंटली आता
0: है। हाँ, इंस्टेंटली आता है मुझे।
1: अच्छा अच्छा, बताओ अपने सुनने वालों से क्या कहना चाहोगी? इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, आपकी रील्स देखी होंगी, तो चलते चलते उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आई, मुझे लोग पहचानने लगे। अब मैं जब रस्ते पे चलती हूँ ना तो मुझे मास्क लगाना पड़ता है, मतलब बार बार सेल्फी मांगते हैं, तो मुझे वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि यार लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे खुद समझ भी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई।
1: इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा विविध भारती पर आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा।
0: थैंक यू सो मच।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डिजिटल क्रिएटर वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आवाज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप है विविध भारती मुंबई के साथ। श्रोताओ, आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का

लाइफ इन अ मेट्रो, ये था फिल्म का नाम। केके और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से।

अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, एजेंट विनोद फिल्म का नाम था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत। चित्रलोक में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

फिल्म टू सेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, एहसान माफ कीजिए शंकर एहसान लॉय का संगीत और

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम और इस गीत को गाया था श्री राम और शिल्पा राव ने, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला।

0: रखो से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को

0: अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी।

0: सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी।

वक्त, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

रेशमा और शेरा इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जयदेव का संगीत था और बाल कवि बैरागी ने इस गीत को लिखा।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में गाइड फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए।

ये है विविध भारती। ये है विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा। इस अंतराल के बाद होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए हैं, जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करे में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो एचएस रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबत लाल का बेटा हूँ।
3: द्वार का?
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आ गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई?
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे?
2: ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है अमीर सर।
2: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर
2: लगता? नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ।
1: घोड़े का ढाई बचो।
3: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
0: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
4: मिर्जा साहब, मैं तो भूल ही गया था, तुम मुशायरा हैं।
5: हजरात, हजरात।

0: कुरान चले आते हैं।
1: हजरत आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है।
0: क्या जन्नत से?
1: अब मैं मीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब,
0: आइए आइए
1: आइए आइए मीर साहब, आइए आइए।

0: अशका है चादर में बैठा, अब का तर्क इस्लाम किया।
1: शायरी के खुदा तूने बिल्कुल सच कहा है, ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद।

सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ।

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मनचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का ये अभिनय।

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नायिका।

लाखों की बात। और हाँ, 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मनचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पी डी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ कर दिए थे, जैसे आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स की रंगमंची प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया। वहीं एके हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अपसी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है।

अपनी फिल्मी यात्रा के कई ठहराव और पड़ावों को पार करते हुए जब 1980 आया, उस वक्त तक संजीव कुमार ने अपने जीवन के प्रति अपनी दिनचर्या के संतुलन को खो दिया था। 1982 की विधाता में एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार के अभिनय की चर्चा चल पड़ी। वहीं 1983 की फिल्म हीरो में संजीव ने अपने अभिनय से दमदार उपस्थिति दर्ज की। फिर एकाएक 6 नवंबर 1985 को सिने दर्शकों का पसंदीदा चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया। संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अपने दिल में मुलाकात की ख्वाहिशों को दबाकर अक्सर उन्हें देखा है, किया है

हमने भी उनके आने का इंतजार, ये इंतजार और उस इंतजार में कटती घड़ियां और लंबी होती जाती हैं। दिल सच ही तो कहता है, तुमको पा लेने में वो कैफियत कहाँ, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में।

वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। बड़ा मुश्किल ये अफसाना हो गया, किसी ने देखा एक नजर और दिल उनका हो गया।

पैरों में लिपटी पाजीब को देखकर रश्क होता है। यखनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे। मेरा

शम्मा को दिन के उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए, खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या कहूँ, जख्म दिल के हैं मेहरबानी आपकी, दर्द दिल भी है एक निशानी आपकी, वफा दिल से ज्यादा आपसे की है, चमन के फूलों की हाँ हमने भी आरजू की है, हसरतों

0: कभी तुमने बुलाया नहीं, कभी हम पास आए नहीं। रात मोहब्बत की धड़कनों को सुनती है, बारह दिल में शबनम की तरह बरसती है। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है। जब सामने वो आ जाते हैं, एहसास अदब हो जाता है।
1: रातों को चोरी चोरी

तमा दिल की जलाकर चरागों को बुझा दीजिए, ये अफसाना मोहब्बत का अब फूलों को सुना दीजिए। कह दीजिए कि रात ढलने को है, सितारे शब के दामन में मुस्कुराने को हैं। ये नज़ारे फिर मुस्कुराएंगे, कैद भंवरे जो फूलों में हो जाएंगे।

ढलती चाहे रात। श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।